0: रुडिया
1: डीजे स्लिम किक इट डीजे स्लिम किक इट अलूटा अलूटा टेके अलूटा टेके Kikao cha Aluta na hakuna mbrr entertainment. I went to a dance last night. DJ Slim.